दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेलिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्मको बचत। वॉशिंग मशीन मा 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन मा 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मा 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव मा कुकिंग किट र एसी मा निशुल्क जडा, साथै 0% ब्याज मा सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपालीको उत्सव दसैं तिहारको एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: दशैं आयो, नयाँ बाइक चढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए यो दशैं बनाऊ अझै विशेष।
1: बजाजले ल्याएको छ बजाज गेम अफ पावर, खेल्ने
0: हो नि, खेल्ने हो, जित्ने हो।
2: यस दशैंमा बजाज मोटरसाइकल वा चेतक स्कुटर खरिद गर्नुहोस् र जित्नुहोस् 1,00,000 रुपियाँसम्मको पुरस्कार। स्मार्ट वाच र बजाजका विशेष उपहार सँगै अभियानका भाग्यशाली विजेताले रविन्द्र ठाट, CR7 होर्रा अर्थात चन्दन गौतम र दिपेन्द्र सिंह ऐरीसँग प्रत्यक्ष भेट्ने मौका पाउनेछन्।
0: कुनै पनि बजाज बाइक खरिदमा पाउनुहोस् रु 7,000 देखि 1,00,000 सम्मको छुट।
1: त्यसैले यो दशैंमा बजाज किन्नुहोस् र सहभागी बन्नुहोस् गेम अफ पावरमा।
3: केदारनाथ अटोमोबाइल प्राली, बाढगंगा 1 बैरिया, तपाईँको आफ्नै बजाज शोरूम।
0: सम्पर्क नम्बर 98570-50243, 98013-51417 र 98013-51423।
4: अरे बाप रे बाप, मरी गान मरी गान।
5: ए साथी लोग, तोहरे लोग एक छिन फुटबॉल बंद करो तो वो देखो विवेक के का होगा। वहाँ झाड़ी को वो ना जाओ कहे रहन,
6: वो देखाओ सब भाग गया। उहर विवेक का काट ली इसकी काओ। उफ, स्कूल के फुटबॉल देखे आए रहन और केस दुर्दशा आए पर रहा।
7: अरे अम्मा तो सांप काट ली, मर जा।
5: विवेक ढेर ना घबराओ साथी। अच्छा शांत हो के ढेर हिल डुल ना कह के बैठो, तुमका हमारे स्वास्थ्य केंद्र पहुँचावा जाये। ए पारत, वहाँ घर के भैया का मोटरसाइकिल लेके आओ कहो तो।
6: हाँ विवेक का ही खुला जगह पर सुताओ, ढेर हिलावे डोलावे न कहते। हम यही काफी से हौकी थे, गठिया के कुछ निचवा काटे है, फूलत है, काटी लिया जगह का छुए और चलावे न ही चाहिए।
5: अब हम विवेक का साहस हुए कहके ओकर कसा पेटी बटन सब खोल दी थे और घड़ी और अंगूठियों निकाल दी थे।
6: बहुत है रोशन, हम इधर विवेक के जूता और मोजा धीरे धीरे निकाल देते हैं।
8: ढेर जैसन सांप के डसाई खतरनाक नहीं होते, समय पर उपचार कई मिले पर विषालु सांप काट लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है। सांप काट लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में पहुंचाई दिए से उनके बरबार क्षति हुए से बचाई सका जाता है।
9: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करें और नक्सेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहीं के पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: यो युनाइटेड हस्पिटल यही होइन र भएको, कहाँनिर साह्रो छ र बिरामी भएर बस्न खाना छैन, हस्पिटल भेटिने होइन।
12: ए दिदीले युनाइटेड हस्पिटल खोज्दै आउनु भएको? यो त सरेर आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा गएको छ नि। ल 4 नम्बर चोकबाट अटो चढ्नुहोस्, त्यसपछि तौलियावा रोड हुँदै 2 किलोमिटर अगाडि जानुहोस्। त्यहाँनिर ठुलो बोर्डमा युनाइटेड हस्पिटल लेखिएको छ, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको समस्याको समाधान भइहाल्छ नि। अनि दिदी, युनाइटेड पहिलाको जस्तो छैन नि, अहिले त धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ। तपाईँलाई जे समस्या भयो त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुने भएकाले कुनै चिन्तै लिन पर्दैन।
13: हजुर, विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच हुने जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न एकमात्र अस्पताल युनाइटेड हस्पिटल बारगुङका चार ठाकुरापुर र झुङ्गाको बीचमा। यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर सहित दैनिक ओपिडी सेवा, पेट छाती मुटु तथा सुगर रोग विशेषज्ञ सेवा, हाड जोड्नी सम्बन्धी हड्डी भाँचिएको रडहरू राख्ने निकाल्ने, महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा, मेजर अपरेशनहरू, एपेन्डिसाइटिस, पाठेघर फाल्ने, हर्निया, पित्त थैलीको ढुङ्गा निकाल्ने, चिरेर बच्चा निकाल्ने लगायतका साना ठुला अपरेशन
12: 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ।
13: नभुल्नु होला टिकट।
12: विस्तृत जानकारी को लागि युनाइटेड हस्पिटल फोन 076-550-200।
0: यो बाइक बिग्रेर हैरानै पार्यो, जति बेला इमर्जेन्सी पर्छ त्यति बेलै बिग्रिन्छ। यो बाइक बनाउँदा बनाउँदा त नयाँ बाइक किन्ने पैसा पनि खर्च भइसक्यो होला।
14: अब फेरि बनाउनमै पैसा खर्च नगर, नयाँ बाइक किन न बरु।
0: नयाँ बाइक त किनौला, तर नयाँ बाइक किन्ने पुरै पैसा पुग्दैन।
14: पैसा नपुगेर के भयो त? बाढगंगा अटो टेरसमा सजिलो किस्ताबन्दीको सुविधा छ, अनि तिम्रो पुरानो बाइकको पनि आकर्षक मूल्याङ्कन सहित एक्सचेन्ज हुन्छ।
0: ए हो र, त्यसो भए अब पुरानो बाइक एक्सचेन्ज गरेर नयाँ टिभीएस बाइक चढ्नु पर्यो।
14: हो नि आकर्षक टीवीएस बाइक तथा स्कूटी मध्ये एउटा छान सजिलो इएमआईमा नयाँ टीवीएस लैजाऊ।
2: हजुर, नयाँ टीवीएस बाइक तथा स्कूटीका लागि आजै पुग्नुहोस् टीवीएस को आधिकारिक विक्रेता बाणगंगा अटो ट्रेडर्स, बाणगंगा एक बैरिया कपिलवस्तु।
15: तपाईँको पुरानो बाइक को आकर्षक मूल्यांकन सहित एक्सचेन्ज को सुविधा, मर्मत तथा सर्भिसिङमा अनुभवी प्राविधिक को दक्ष सेवा, कम्पनीकै ओरिजिनल पार्ट्स को भरोसा। बाणगंगा अटो ट्रेडर्स, पुरानो झन्झट छोडौ, नयाँ टीवीएस चढौ।
2: सम्पर्क नम्बर 076550111 98570133 63

0: लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवलमा आधुनिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा शुरू भएको अनुरोध।
1: बुटवलमै पहिलो पटक शरीरको कुनै अङ्गको लिगामेन्ट च्यातिएको, स्पोर्ट्स इन्जुरेन्स साथै हाड जोड्नी, नसा तथा ट्रमा वा दुर्घटना सम्बन्धी बिरामीको उपचार बीएनबी हस्पिटल काठमाडौँबाट अर्थोस्कोपी सर्जरी र स्पोर्ट्स इन्जुरीमा फेलोसिप गर्नुभएका डाक्टरबाट आधुनिक विशेषज्ञ सेवा शुरू भएको छ। विशेष गरी हाड जोड्नी भाँचिएको, लिगामेन्ट च्यातिएको बिरामीहरूको अपरेशन दूरबीनको माध्यमबाट गरिन्छ।
0: साथै वीर अस्पताल नेम्स काठमाडौँका फिजिसियन डाक्टरबाट उपचार सेवा र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट इको ईसीजी को माध्यमबाट मुटु तथा छाती रोगको उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदै पूर्ववत सेवाहरू,
1: नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा,
0: स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा,
1: जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी विशेषज्ञ सेवा,
0: शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
1: दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ सेवा,
0: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा,
1: हिस्टो साइटो बायोप्सी हार्मोन जाँच गर्ने प्याथोलोजिस्ट डाक्टर सहितको प्रयोगशाला,
0: फिजियोथेरापी विशेषज्ञ सेवा,
1: आईसीयू एनआईसीयू डिलक्स बेड सहितको इन्डोर सेवा सञ्चालन भइरहेकोले निजी क्षेत्रको जेठो एस हस्पिटलबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।
0: सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवल छ, साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्राली, फोन 071-531-641 र 535-641।
2: अरे सुन न जाइना, के भयो आजकल, के भयो, हमने साथी का सांप काट लिया।
3: का होइगो बहिनी, आप काहे चिल्लावा जात है, अरे ये भुइया में के हो?
2: सुन न जाइना भैया, हमरे दोनों जनी का हाथ काटे आए रहे, हमरे साथी का सांप काट लिए, अब कहा कर रहे, एक जल्दी उपचार केंद्र पहुँचाए मिल तो ठीक रहा।
3: ओहो, ऐसा समय पर एम्बुलेंस और चार चक्का गाड़ी खोज के अगोर के नए बैठे चाहिए। एहन चरवे के गांव में हमारे एक जने मोटरसाइकिल भवा साथी हैं, फोन करी थे हम, आप न घबरावा जाए, साथी का ध्यान दिया जाए। हेलो मुकेश, तू तुरंत मोटरसाइकिल लेके यहाँ आओ तो, यह एक जनी बहनी का सांप काट लिए है, इमरजेंसी होगा, तुरंत उपचार केंद्र ले जात पड़ा, राजमार्ग चौराहा से 100 मीटर पच्छू बायओवर हन हमरे। मुकेश जल्दी आओ ना सब काम छोड़ के।
4: होते है संतोष, हम मोटरसाइकिल लेके चले आए।
3: सुना जाए बहनी, सांप काट लिया व्यक्ति का जितना हो सके उतना जल्दी एंटी वेनम उपलब्ध रहा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाए चाहिए, ऐसे समय पर जल्दी होने वाला यातायात के साधन छनौट करे के चाहिए। यदि मोटरसाइकिल की व्यवस्था है तो अपने और सवारी चालक के बीच में सांप काट लिए व्यक्ति का सुरक्षित हुए के मेर से तुरंत उपचार केंद्र पहुँचावे के चाहिए। वो देखो मुकेश मोटरसाइकिल लेके आए गवा, हमारे विश्वसनीय साथी है, हम तुरंत बीमरिया का अपने और मुकेश के बीच में रख के मोटरसाइकिल से उपचार केंद्र पहुँचाए थे, आप हमारे साइकिल लेके वहरे आवाज है।
2: होते भैया बहुत ही सहयोग करा गए, चला जाए जल्दी चला जाए।
5: याद रखा जाए, सांप के डसे के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्वतंत्र उपचार केंद्र जाए के जान बचावा जाए।
6: यदि समय पर उपचार कई मिले पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचा सका जात है और यही से होए वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ये वही व्यक्ति के जीवन बचाव एक बहुत मदद करत है।
3: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगाए, आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
7: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
8: दसैँ आयो, नयाँ बाइक चढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए यो दसैँ बनाऊ अझै विशेष।
9: बजाजले ल्याएको छ बजाज गेम अफ पावर, खेल्ने हो
8: नि, खेल्ने हो जित्ने हो।
1: यस दशैंमा बजाज मोटरसाइकल वा चेतक स्कूटर खरीद गर्नुहोस् र जित्नुहोस् 1,00,000 रुपियाँ सम्मको पुरस्कार। स्मार्ट वाच र बजाजका विशेष उपहार सँगै अभियानका भाग्यशाली विजेताले रविन्द्र घाट, CR7 होर्रा अर्थात सञ्जन गौतम र दिपेन्द्र सिंह ऐरीसँग प्रत्यक्ष भेट्ने मौका पाउनेछन्।
8: कुनै पनि बजाज बाइक खरिदमा पाउनुहोस् रु 7,000 देखि 1,00,000 सम्मको छुट।
9: त्यसैले यो दशैंमा बजाज किन्नुहोस् र सहभागी बन्नुहोस् गेम अफ पावरमा।
10: केदारनाथ अटोमोबाइल प्राली बाढगंगा 1 बैरिया तपाईँको आफ्नै बजाज शोरूम।
8: सम्पर्क नम्बर 98570-50243, 98013-51417 र 98013-51423।

Essence. LG ले ले आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range. 10 वर्ष को warranty सहित 0% no cost EMI. नागरिकता भए पुग्छ. हर एक घर को खुशी घर घर में LG. LG, life's good.

दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।